0: 88.2.
1: हेलो हेलो हेलो साहिबान कदरदार,
2: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
3: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब सुनेगी गीत मेरे तुम भी संग मेरे गुनगुनाएंगे। यस यू विल नॉट फॉरगेट मी, एंड वेन एवर यू हेयर माई सॉन्ग यू विल सिंग अलॉन्ग विद मी। शुक्रिया, मेहरबानी। प्रोफेसर दौलत राम दास सॉल्ट रोड के रहने वाले हैं, ये आपकी मोहब्बत है दैट यू हैव सेंट इन सच ए ब्यूटिफुल मैसेज, एंड ऑफ कोर्स यू एब्सोल्युटली राइट, रफी साहब वॉज ए लेजेंड, नॉट ओनली ऑफ हिस टाइम बट ऑफ कोर्स एज यू कैन सी इट इज यू नो 46 years since he's left this world for the world beyond, and he passed away in July 31st, 1980, and the world still remembers this personality, and even the young ones are listening to his songs. Thank you so much, Professor Daulat Ram Das Sahab, Ricky, our night owl man, and of course, Pran Mahabir, all the way from Tugela Rail, and Cass from Cape Town. Yes, our niece Cass from Cape Town is also tuned in and enjoying the music. Saath hi saath hamari behen Tarana. Yes, Tarana is celebrating her birthday today. She's one of the family, one of the Lotus FM families. Tarana, Salgira Mubarak. तुम जियो हजारों साल, और साल के एक दिन हो 50 साल की तरह।
1: Hi, this is Michael Owen, Hollywood Bets brand ambassador. Being a champion, I know the best performances come from making the right decisions on and off the pitch. Enjoy the game, enjoy the excitement, but play responsibly. Gambling responsibly is about staying in control so you can enjoy it your way. If you or someone you know needs support, help is always available. Call the South African Responsible Gambling toll-free

0: हेमा,
1: खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें. एंड यू एब्सोल्युटली राइट प्रोफेसर साहब, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट. आई सी आवर आवर लोटस एफएम फैमिली एंड मोस्ट स्पेशली दोज दैट लिसन रेगुलरली टू टू गुलदस्ता आर रियली गॉन ओवर द मून लिसनिंग टू सम ऑफ द गजल्स. यू गोना एंजॉय एवरी वन ऑफ इट, बिलीव मी. मेमोरीज आर गोना कीप कमिंग फ्लडिंग बैक टू एवरी वन ऑफ यू. अनिल रामस्वरूप बेनोनी के रहने वाले हैं, अनदर ब्रदर दैट लव्स हिज म्यूजिक एंड ही नोज हिज म्यूजिक. शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. सबिता सुखदेव, अनदर वन ऑफ आवर रेगुलर्स, ऑल्सो गॉट सम वेरी गुड वर्ड्स टू से. आपका सूरज इज वेल इज लविंग द म्यूजिक. एंड वी गॉट शख्स सीताराम फ्रॉम पी एम बी the B, that is Peter Manitzburg. Rukhaya Mia, thank you, my sister as well. Logan Archery as well is loving their music. And of course, we have Tina Naika all the way from Shellcross as well. And like I said, we're going to have, you know, our memories are going to come flooding back listening to this great, great artist.

चले उड़ जा रहे पंछी कि देश हुआ बेगाना. यस आशा, यू एब्सोल्युटली यू नो एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट सच गुड वर्ड्स टू से. यू नो इट्स अ पिटी दैट आई कैन नॉट रीड आउट ऑल योर मैसेजेस, बट थैंक यू गाइस सो मच. दिस कस्तूरी एज वेल, थैंक यू माय सिस्टर फॉर योर काइंड वर्ड्स देयर. एंड देन देयर्स योगी ऑफ लिनेशिया, शी इज ऑल्सो एंजॉयिंग द म्यूजिक, थैंक यू सो मच. एंड ज़ाकिरा, नो डाउट दिस वॉइस विल रिमेन फ्रेश for years to come. And you know something, the writers, those people, those shires, those poets that wrote these songs, they were in another league as well, as you can hear. Thank you Asha, Kasturi, Yogi, Zakira, and everyone else that are sending your messages through. Really, like I said, we're enjoying the music. I myself am sitting here and really enjoying them. Wo kehte hain maut unki awaaz ko cheen nahi saki kabhi. मौत उनकी आवाज़ को छीन नहीं सकी कभी, दिलों में जिंदा है और रहेंगे वो अभी.

प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, यस, और मुखड़ों को छुपा लो आंचल में, कहीं खुद की नजर ना लगे। एंड ऑफ कोर्स आपका सूरज ही इज अ सिंगर, एंड ऑफ कोर्स ही सेज दिस सॉन्ग इज सॉन्ग एट ऑल फंक्शन एंड इज रिक्वेस्टेड सो मेनी टाइम्स दैट ही जस्ट गोज ऑन सिंगिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई ब्रदर। एंड देन सेल्वी मोडली ऑफ केप टाउन इज ऑल्सो एंजॉइंग द म्यूजिक। हमारे सैफुद्दीन जाफर साहब ऑल्सो केपटाउनियंस एंजॉइंग द म्यूजिक। Polly from Verulam as well. Anil Ramsurup is gone over the moon. He's in another world, this man. Thank you so much, Anil Ramsurup. And Tarana, who's celebrating her birthday. And of course, she's one of the Lotus family members as well. And a fan of Ghazal. We wish you well, my sister. Enjoy your day. And of course, like I said, this Ghazal was for all our women since it's being Women's Day. To lead your program, go ahead. Let's listen to another popular ghazal of

कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो. यस, वी हैव शांति महाराज ऑफ के महाराज ऑफ न्यू कैसल ऑल्सो इंजॉइंग द म्यूजिक टुगेदर विद यस्मीन ऑफ केप टाउन. यस्मीन ऑफ केप टाउन, कस्तूरी सेज ओल्ड मेमोरीज आर कमिंग बैक, एंड सेम विद सबिता सुखदेव, एंड ऑफ कसूरज एज वेल इज इंजॉइंग इट एज वेल. थैंक यू गाइस सो मच. रवि जी, थैंक यू माई ब्रदर, थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू दैट आर लिसनिंग थ्रू.

अख्तर की सनम तुझे हमने, ऑफ कोर्स वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जहां तक मेरा सवाल है, जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक जिंदगी को संभाल के रखना, जिंदगी मौत की अमानत है। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन इमीडिएटली आफ्टर द 7 PM न्यूज बुलेटिन टॉक एट 7 विद शास्त्रा नगेशकर। आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग आउट विद अनदर फेवरेट ऑफ एवरीवन दैट इज लिसनिंग थ्रू।